0: पे जाए ए साला जी थाला है नदियां से बाहर पासों न जान समुद्र चाहता
1: अंत न सुनी कहन नान अंत न करने देर नान अंत न देखन सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मन अंत न जापै चिंता अंत न जापै पारा अंत कारण के दे बिलाए आके अंत न पारे एहो अंत न जाने।

तरसी सावधी तर्म करमी करमी सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सोवे कच्छ पाई उथ पाए नानक गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का अप

सत्पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य

गावै राजा धर्म दुआरे, गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म बिचारे। गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी, सोहन तेरे सदा सवारे। गावन तुदनो इंदर इंदर आसन बैठे, देवतया दर नाले। गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध बिचारे। गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सूर, जुग जुग वेदा नाले। गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन, सुरग मश पयाले। गावन तुदनो रतन उपाय तेरे।

सारे सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर किते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जनसी माया जिन उपाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहो साह पत साहेब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड़ा आखै सब कोए के वड़ वड़ा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए

रहाओ। सब सुरती मेलो सुरत कमाई, सब कीमत मेलो कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगे आईया, सिद्धा पुरखा किया वड्याईया।

भंडारा, जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चली है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहेब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए,

दास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जान के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृपता सह मिल संग

सत नहीं आए। त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जान सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत, जित हर रस पाया।

के जी जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई, जो तौ पावै सोई थी सी, जो तू देह सोई हो पाई। रहाओ सब तेरी तू सबने त्याया, जिसनु कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जाना है सोई जान जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखा है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पई ले निवासा। पानी पावक तिन है किया, पंकुज मोह पग नहीं चालै। हम देखा तह डूबी अले, मन एक ना चेतस मूड मना। हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दाय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दाय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै कर पारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन कौ आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखण हारे, साहेब संत सहाये प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार नृपकार निर्लंभ, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेवना पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो।
दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण खाता। जे अस तुज तब सरनी परे, पिनके दुष्ट दुखित हवा मरे। पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताकि काल निकट नह आय है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तातो काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताकि ताप तनक मोहर हो। रिद सिद कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोखते रहा।

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तपाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां।

ना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारी। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरे नाली। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किशो है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारू, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया

तयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित राख उर तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारू।

पौड़ी। तिथे तू समरथ जिथे कोए नाहे, उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे, पौ जल बिखम असगाहो गुरसबदी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोय ना जाए जे आवै तू दयाहे। सलोक महला पंजवा, अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ। नेत्री सत गुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतया दरगह पाइय ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो ए वात दे। जग मह उत्तम काडीऐ विरले के महला पंजवा।

साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बेदारियन। तिस साहिब की टेको नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। तिस साहिब की टेको नानक मन माहे, जिस सिमरत

मिल सांझ करीजै, सांझ करीजै, गुण है केरी छोड़ अवगण चली है। पहरे पटंबर कर अडंबर अपना पिड़ मलिए।

महाराज का कोई भावना नाल नाम भी ले ले, कहंदे ने सुते हुए भाग जाग जांदे ने। इन्ना फला कीता महाराज ने। गुरु रामदास जी का बचपन वेख लो, बड़ी दर्द भरी कहानी। 2 साल दे सन, मां गुजर गई, 7 साल दे होए पिता जी गुजर गए। रिश्तेदार कहंदे ने जेठिया तू यतीम हो गया। कोई कहंदा है तेनू कपड़ा लीड़ा कौन देगा, कई कहंदे ने तेरी रोजी रोटी कौन चलाएगा, किसी ने यह भी कह दिता ना तेरा घर ना तेरा बर बार कित्थे जाएगा। पर कौन जानदा सी, जिसनू तुसी कहंदे हो तेरा घर बार नहीं, तेरे कोल कपड़ा लत्ता नहीं, प्रशादा नहीं। सच्ची प्यारियो, गुरु नानक दा घर एडा महान है, ऐसी कलावर्ती जिसनू दुनिया कहंदी सी तेरा घर नहीं, पर अज जेठे वर्गा घर किसी दा भी नहीं। जिसनू दुनिया कहंदी सी तेनू कपड़ा लीड़ा कौन देगा, 2.5 लाख संगत रोज, जिसनू कितों नहीं प्रशादा मिलना, उहनू गुरु रामदास दे घर विचों प्रशादा मिलना। जिसनू रिश्तेदार कहंदे सी तेनू कपड़ा लीड़ा कौन देगा, आज उत्थे 50,000 तो लैके 5-5, 10-10 लाख तो रुमालियां दी वारी नहीं आउंदी। अपने आप नू मिटा के गुरु रामदास जी ने सेवा कीती, जीवन विचों एक रोशनी मिलती है। गुरसिखा, जे तेरे जीवन विच निमरता नहीं, तेरे जीवन विच सहनशीलता नहीं, प्यार ते मोहब्बत हले मिटना नहीं आया, इंज जानी हले तू गुरु रामदास जी दियां बख्शिशां माणियां ही नहीं। गद्दी दे मालक बन गए, गुरु नानक दा रूप हो गए सोडी सुल्तान, पर अखां भर आईयां वैराग नाल, संगतां पुछदियां ने महाराज क्यों रोई जाने हो, कहंदे ने चुक्की कलम इन्ने वैराग विच चले गए, रब नाल गल्लां करन लग पए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानू वापे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। अपना हाल इन्हां पंक्तियां विच निरंकार नाल गल्लां करके बाणी उचारी ते दस्या संगत नू, जे मेरी बांह गुरु नानक ना फड़दे मैं रुल जाणा सी। ए वडियाईयां बाबे नानक दियां ने, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। रज रज के महाराज का शुकराना करिए। दुनिया यह भी कहती सी ए तो गरीब राजा, एदा ब्याह नहीं होएगा, एदा आनंद कारज नहीं होएगा, पर यह कौन जानता सी भाई गुरु रामदास जी तो बगैर किसी का भी आनंद कारज नहीं होएगा। जिन्ना चिर महाराज दियां 4 लावां ना पढ़िया जान, आनंद कारज संपूर्ण नहीं। देखो कैसी खेड़ है, सदा शुकर करिए, सदा शुकर करिए। धन गुरु रामदास जी, तुहाडे दर्दियां महान रूहां, साईं मियां मीर जी, भाई शालो जी, भाई गुरदास जी, माता गंगा जी, बाबा बुढ़ा जी, गुरु अर्जन देव जी, सब नूं ही नमस्कार। सब दी चढ़दी कला, आओ जी साडे सन्मानयोग भाई साहब जी, भाई लखविंदर सिंह जी आप जी दे सन्मुख होण, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा।

0: सगल सामग्री तुम रे सूतर धारी तुमते हो ऐसो तुमरी गत मित नानक दास सदा कुर्बानी।
1: बोलो जी। अरदास एक ओवंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवत जी सहाय वार श्री भगवत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक है। गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जुन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याईए जिह जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु हाजरा हजूर गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहा साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडित कीता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके। बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल तन चिरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां सिखी केसां स्वासां संग निभाई धर्म नहीं हारिया तिना दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु

वो चहें खोज शब्द में राज करेगा खालसा आकी। ख्वार होए सब मिलेंगे खंडा जाके हाथ में कलगी। सो हमरी रचया करे गुर कलगी तर।

0: पुरख विदाते शरदा मन के पूरे नानक दास यह सुख मांग मोकु कर संतन के तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। तुदया गए अरदास हमारी जियो पिंड सब

सतगुर ए नमः, श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदी। सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहि मिटावों। सिमरों जास विसंबर एक है, नाम जपता गंत अनेक है। वेद प्राण सिमृत सुदाख्यर कीने, राम नाम एक आख्यर। किनका एक जिस जीव सावै, ताकि महिमा गनी न आवै। कांकी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उदारो। सुखमणि सुखमृत प्रवनाम, भगत जिन्ना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु कै सिमरन दूख जम नसै। प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभु कै सिमरन पौ न ब्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभु कै सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभु कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु कै सिमरन होय सुफला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला। से सिमर है जिने आप सिमराए, नानक ताकै लागो पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभु कै सिमरन उदरे मुचा। प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि समाए। प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दर्शन दसना। प्रभु को सिमरै से तनवंते, प्रभु को सिमरै से पतवंते। प्रभु को सिमरै से जन प्रवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरै से बेमहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सुधा विनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै। प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न चूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी। प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कंत न पार। सिमरै से जन जिन को प्रमया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग वेद उपाए। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई। जय मा प्या दू जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवै तो भारी, हर को नाम किन माए उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कूट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे। सगल श्रेष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोड़ बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग कितना बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जे मार गिर जात केला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नामन सदा त्याई, नानक गुरमुख परम गत पाई। छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत है पार पराई। अनिक बिघन जय आय सिंगार है,
हर का नाम तत्काल उधारे, अनिक जून जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हो मैला मल कबू न तूवे, हर का नाम कूट पाप कूवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाई है साध कै संग, जी मार के गण जाहि न कुसा, हर का नाम मुहा संतोषा, जी पैटे मंद गुबारा, हर का नाम संगु जी आरा, जा पंथ तेरा को न सिंजानू, हर का नाम तै नाल पछानू, जय महाप्यान तपत बोकाम, तय हर के नाम की तुम ऊपर छाम, जा त्रिका मन तुझ आकर कह, तह नानक हर हर अमृत बर कह, भक्त जना की वर्त नाम, संत जना कह मन विश्राम, हर का नाम दास की ऊट, हर कह नाम उतरे जनकूट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर खुद साध कमात, हर जन कह हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन किन्नु दान, मंथन रंग रत्ती रंगी कह, नानक जन कह बिरत बबिक कह, हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर कह नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का पर न भंग, हर का नाम जन की वडे आई, हर कह नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहि बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन के मालक जीना, हर तन जन को आप प्रभु जीना, हर हर जन के ऊट सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, उत पूजन हर रस राते सुन समाद, नाम रस माती आठ पहर, जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुक्त भोग करे, नानक जन संकेत तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लत्था, नाम की महिमा संत ऋदवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग विड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को ए श्लोक, बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल, पूज सुनाई हर हरे नानक नाम अमूल, अष्टपदी जा प्रताप ज्ञान सब ध्यान, फट शास्त्र सिमृत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान हो में बहु रतना, शरीर कटाए हो मैं कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, माँ उदास पिसर थीवे, अग्न वाहि हुमत प्राण, कनिकस्व है वर भूम दान, न्यवली कर्म करे भुवासन, जैन मार्ग संजम साधन, निमुख निमुख कर शरीर कटावे, तौ पी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम संसर कछ नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाई, मन कामना तीर दे छुट्टे, गर्भ गुमाना मन ते उठे, सोच करे दिन स रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न भिख्या टरे, जल तो वह बहु दे अनीत, शुद्ध का होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु ऊच, बहुत सियान बजम का भव व्यापै, अनिक जतन कर त्रिसुन्ना त्रापै, पेख अनेक अग्नि बुझै, कोट पाव दरगै नहीं सिजै, छूट सुनायु पयाल, मुहि व्यापै माया जाल, अवर कर तू सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोलै सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सुध गावै, जी को अपनी शोभा लोरै, सा संगे हो मैं छोरै, जी को जन्म मरण ते डरै, सा जना की सरणी परै, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, सा समझा का मिटै अभिमान, आपस कौ जो जानै, नीचा सो गणिय सब ते ऊचा, जा का मन होइ सगल किरीना, हर हर नाम तिन कट कट चीना, मने अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन समृष्टिता, नानक पाप नहीं लेपा, निर धन को धन तेरो नाओ, निथावे कौ नाओ तेरा थाओ, निमाणे कौ प्रभ तेरो मान, सगल कटाको देवो दान, करन करावन हार स्वामी, सगल कटाके अंतर जामी, अपनी गत में जानू वापे, अपन संगा प्रभ राते,
तुमरी उस्त तुम ते होए नानक वर न जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत माल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी घट वसै हर नाम शलोक निर्गुण यार एनिया सुप्रभ सदा संभाल जिनकी आत चीत रख नानक निभि नाल अष्टपदी हर मैया के गुण चेत पुरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू सासवार सिगारिया घर भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जो बन भोजन सुख सूद बिरद भयाओ पर साख सहन मुख पयाओ बैठ कौ दैन हो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लिहो तो नानक सीजे जी प्रसाद तारु पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघ सह जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पाव कमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग सात बसा तेने हस्त भाव करणे तरसना तिसै त्याग और संगरचना ऐसे दुख मूढ़ व्यापे नानक काढ लिहो प्रव्यापे आदंत जो रख नहार तिस्यों प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव निध पावै तासु मूड़ा मन नहिलावे जो ठाकुर ससदा हजूरे ताको वंदा जान दूरे जाके टहल पावे दर के मान तिसे बिसारे मुग्ध जान सदा सदा भूलन हार नानक रख नहार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै सा छोट छूट संग मचै जो छड़न सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर पराने छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारे तो हे गर्द प्रीत पश्म संग हो अंधकूमै पत बिकराल नान काट लिहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मान सुजात लोक पचारा करै दिन रात बार पेकंतर मलमाया छप सुनाए कच करै छपाया बार ज्ञान ध्यान सुनान अंतर व्यापै लोक सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पात्र कैसे तरै था जा के अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजन सह सुमार सुन आंदा कैसे मार्ग पावै कर गै लिहोड़ निभावै कहा बुझार सबूझै डोरा निष्करिय तू समझै पूरा कहा विष्णु पद गावै गूंग जतन करै तो पी सुर भंग कह पिंगुल पर्वत पर भवन नहीं हो तू हा उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुहा वै न चीत जो बैराई ता सुप्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोक त्रोहिया उजुक्त बयाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम तू ठाकुर तुम पै अरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जानै तुमरा अंत उच्चे ते उच्चै भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र धारी तुम ते होए सुआग्याकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दा सदा कुरबानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागहि आन सुहाए नानक कहु न सीजई बिन नावै पत जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक बस कारण विकोट गवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कौ कह करे ज्येष्ठा कुरस्यो नाहीं चारा ताकू की जय सद नमस्कार आजा कै मन लागा परमीठा सर्व सुखता हु मन उठा जिस जने अपना हुक्म नाया सर्व तोक नानक तिन पाया अगंत राव अपनी दे रास खाद बीज वरतै अंधुलास अपनी मन कछ बार सावले अज्ञानी मन रुस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बोर उसका विश्वास न होवै जिसकी बस तिस्या गै रखै प्रभु की आज्ञा मन मत है उसते चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हित सर पर होवत जान अनेक फिर की छाया स्यो रंग लावै ओ बिन सै मन पछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रो तय अंधार बटाऊ स्यो जो लावै नेहि ताको हाथ न आवै केहि मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती सुभस्त्रा मिथ्या रंग संग
माया पे खास्ता मिथ्या त्रोमु अभिमान मिथ्या पुसूपर कर्तव मान अस्त्रिपग साध की शरण नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पाए सफल दे नानक हर हर नाम लय विरथी सागत की आर जा साच बिना कहूत सूचा विरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाय मीघ बिना ज्यो खेती जाए गोबिंद भजन बिन वृथे सब काम ज्यो कृपण के निरार्थ धाम धन धन ते जन जे घट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ रह तवर कछवर कमावत मनी प्रीत मुखो गंडलावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर पेख न काहू पीन अवर उपदेशय आप न करै आवत जावत जन्मे मरै जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार जो तुम पानी तिन प्रभ जाता नान कुंजन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सुजा ने अपना किया या पहमान आप है आप आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नीरा पाव से अनुसगल ते रहत सब का जाने आत्म की रहत जिस पाव है तिसले लड़ लाए तान तनम तरया सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी श्लोक काम क्रोध यार लोभ मोह बिनस जाए अहंग मेव नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छत्ति अमृत खाही तिष्ठा कुर कौ रख मन माही जे प्रसाद सुगंधित तन लावै तिसको सिमृत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नान सदा त्याय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हडावै तिसै त्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सुविजय मनाठ पैरता का जस भाविजय जे प्रसाद तू सब को माने मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याहे केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जप दरगह मान पावे नानक पद सेती कर जावे जे प्रसाद आरु कंचन देही लिवलावो तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन सा सा सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाए दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूकन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रवे प्रवे अपने मना जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठ सत सहते आई तिसहते आई जो एक अलखै नाऊँ नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मनाठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरु सदा नूप जे प्रसाद तेरे निकी जा सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पिखै बिस्मा जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै सब प्रत्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार किस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप जे प्रसाद तेरी कार्य पूरे जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसा जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सुराच जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सुहार गुण गाओ प्रभु कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए
सर्व निदान प्रभु तेरी मया आपू कछु न किन्हू लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक किनके कछु नहात श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता हुए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचर्ज कथाष्टपदी साधक संग खूजल होत साध संग मल सगली कोत साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटे सुज्ञान साधक संग बुज्जै प्रभु नेरा साध संग सब होत नवेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधकी महिमा बरने कौन पुरानी नानक साधकी शोभा परमाए समानी साधक संग अगोचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्ल साधक संग आवै बस पंच

अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परसो मन में प्रीत निरंजन दर्शो पर त्रै रूप न पिक है नेत्र साध के टैल संग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरय मन की वासना मन ते टरय इंद्रिय चित पंच दोख ते रहत नान कोट मध्य को ऐसा परस वैष्णो सो जिस उपर सुपर सानो विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हो ऐने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहु बल कीचा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्राचे मन तने अंतर सिमरन गोपाल सब उपर होवत कृपाल आप दृढ़ और नाम जपावे नानको वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मनते बिन सह सगला परमु कर पूजे सगल पार ब्रह्म सासुन पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पय बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक कैसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रभु दै राम नामातम में शुद्ध है राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कै उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नाया वै वेद प्राण सिमरत बूझे मूल सुख मह जाने अस्तूल चौ वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वर्णा मह जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए सा सुन पावे जन कोए कर कृपा अंतर उर तारै पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाव काहू जुगत कितै न पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिसने दरी आया दास जसंतन पाए किन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवानु अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सूची परे सगल संगत मुदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तुम हितावे जीवन मुख सो कहावे तैसा हर्ख तैसा उसोग सदा नंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा मृत तैसी बिखाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरता ईसाई जुगत नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाऊ जित जित घर रख है तैसा तिन नाउ आपे करन करावन जो प्रभाव है सोई फन हो असर आप अंत तरंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग जैसी माते तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पहि निहार श्लोक उस्तद करे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रवरची बहुविध अनेक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भ्रमय उदासी कई कोट वेद की श्रोती कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नव तनाव त्याव है नानक करते कांत न पावे कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपेगात्म निकोर कई कोट पर दर्भ को हिरा कई कोट पर दुख न करह कई कोट माया श्रम आहे कई कोट पर देश पर माहे जित जित लाओ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सुदजति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पात्र बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी वैसंतर कई कोट देश भू मंडल कई कोट ससियर सूर नखेत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जिच पावे तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत शास्त्र कई कोट कीरतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरि मेर स्वरण थीवे कई कोट जक्की नर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मृगाच सब ते नीरे सब हुते दूर नानका बलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी
कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मरै, कई कोट बो जोनी फिर है, कई कोट बैठ तही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जय जय पाणा तह तै राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे, कई कोट पै वैरागी, राम नाम संगति लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ्यास, तिनको मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होया सु प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट काणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होय अवतार, कई जुग किन्नो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट किन्ने बपात, प्रभ ते होय प्रमाय समाता, कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोय, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रकाश, कई कोट तत् के बेती सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे अमर पैसा सद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस उसै समावे, अपने जन को साथ साथ सुमारी, नानक कोय परमेश्वर के प्यारी, सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहार नै जल थल महिल सोय, अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस पावे सोई होग, खिन मैं थापु थापन हारा, अंत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच विहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक समै रिया समाई, प्रभावै मानुख गत पावै, प्रभावै तां पात्र त्रावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै तां हर गुण पाखै, प्रभावै तां पतित उधारै, आप करै अपन विचारै, दुहां सिरिआं काप स्वामी, केलै बिकसै अंतर जामी, जो पावै सुकार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानुख ते क्या हुए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसकै हाथ होए तां सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजान विख्या मैं रचै, जे जानता अपना बचै, परमे भूला दह तिस तावै, निमक माय चार कुंट फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक तेजन ना मिले, किन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवास, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दा तिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लिखा न गनै जगदी, जीव पिण सब तिस की रास, खटखट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही सहाथ, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस पावै सोई पुंथियो, कब हूँ ऊंच नीच में बसै, कब हूँ सोग हरक रंग हसै, कब हूँ निंद छिंद विहार, कब हूँ वकास पयाल, कब हूँ बेता ब्रह्म विचार, नानक मिला वनहार, कब हूँ नृत करै बपात, कब हूँ सोए रहै दिन रात, कब हूँ माँ क्रोध विकराल, कब हूँ सर्व की हो तरवाल, कब हूँ होए बह बड़ राजा, कब हूँ पेखारी नीच का साजा, कब हूँ अपकीर्त में आवै, कब हूँ भला भला कहावै, च्यों प्रवरा कह तिव ही रहे, गुरप्रसाद नानक सच कहे, कब हूँ होय पंडित करे बख्यान, कब हूँ मोन धारी लावै ध्यान, कब हूँ तट तीर्थ स्नान, कब हूँ सिर साधिक मुख ज्ञान, कब हूँ कीट हस्त पतंग होय जिया, निक जुन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावै, जो प्रभावै तिवै नचावै, जो तिस पावै सोई होय, नानक दूजा वर ना कोय, कबू सा संगत उपावै, उस स्थान ते बोर ना आवै, अंतर होय ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंत्र नाम रत एक रंग, सदा बसह पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मैं जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए बिसराम, नानक प्रभ कै सत कुरबान, सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ बले अष्टपदी, जिसके अंतराज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को करमंत कहावै, जन्म मरै बहुजून प्रमावै, तन भूमिका जो करै गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै, नानकी हां मुक्ता गै सुख पावै,
धनवंता हुए कर कर बावे तिन समान कर संग न जावे बोलस कर मानुकु पर करियास फल पीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाय पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय किस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दर गए परवान कोट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले बिर थारे अनिक तपस्या करे अहंकार नर सुर फिर अवतार अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवे हर दर गह को कैसे गवे आपस को जो पला गहावे तिसे पलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा कामन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोई जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निचल ना ही चीत जब लग मोह मगन सगमाई तब लग धर्म राय देश जाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक कहो छूटे सहस कटे लग कोट तावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनिक भोग बिकिया के करे न तृप्तावे खप कमरे बिना संतोख नहीं कूरा चय सुपन मनोरथ वृथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किछ कीनो सु अपने रंग सब ते दूर सबु कै संग बूझे देखे करे विवेक आपै कापै अनेक मरे न बिनसै आवै न जाए नानक सद ही रहा समाए आप उपदेशै समझै आप आपे रचिय सब कै साथ आप कीनू अपन विस्तार सब किछ उसका करने हार उसते पिन कहो किछ होए थान तनंतर कै सोए अपने चलता करने हार कौत करे रंग आपार मन में अमन अपनी माई नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किन्ने वख्या नी सच सच सत सब कीना कोट मते किन्ने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन पर सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आरजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुट्टै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मिलीन संत कै दुखन सो बाते हीन संत के हथे को रखे न कोई संत कै दुखन थान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जी करे नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जून लवै सतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में चले संत कै दुखन सब कुछ छले संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाहे नानक संत पावै तावे भीगत पाए संत का निंदक महा अत ताई संत का निंदक खिंटिक न पाई संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत पावै ता उसका पी हुए मुख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डान लाग गए संत के दुखी को सब त्याग गए संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म में मरे संत की दुख ना सुख ते टरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता ले मिलाई संत का दुखी अद विष ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान फरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ ना आए अपन बीजा पे ही खाए संत के दुखी को वरना राखन हार नानक संत पावे ता ले उभार संत का दुखियों बिल लाए ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पाव किंत नहीं त्रापै
संत का दुखी छुट्टै केला, जो बुआड़ तिलखीत माही दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथिया कहत। किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो दिस भावै सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है। संत के दुखी की पूजै न याता, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख न तृष्टै कोई, जैसा भाव है तैसा कोई होई। पया किरत न मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोई। सब कट तिस क्यो करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार। रब की उस्तत करो दिन रात, सहते आवो सास की रात। सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कुथिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक। तजो सियानक सुरजन हो, सिमरो हर हर राए। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए। अष्टपदी मानु की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक है भगवान। जिसके दिए रह अघाई, बहुर न तृष्णा लाग गए आई। मारे रखे कुआप, मानु कह किछ नाही हा। तिसका हुकुम भू सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए। उस्तत मन में कर निरंकार, करमन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना मृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेखता कुरकारंग, साध संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मत्था। बड़भागी ते जिन जग माही, सदा सुधार के गुण गाही। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गणी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जन होते सुखी। एक एक एक पछाने, तुत की सोजी जान। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया। गुरु प्रसाद अपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। सा संग हर हर जस कह, तो सर्व रोग त्यो हर जन रह। तो अंदर कीर्तन केवल बुख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन, एक ऊपर जिस जन की आसा। तिसकी कटिया जम की पासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख। नानक तिसन लागे दुख, जिसको हर ब्रह्मन चिते आवे। सो संत सुहेला नहीं डुलावे, जिस पर भी अपना कृपा करे। सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्ट आया। अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजया। गुरु प्रसाद तत् सबूचया, जब देखो तब सब किच मूल। नानक सो सुखम सोई असूल, न किच जन्मै न किच मरे। अपन चलताप ही करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट। आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, वापे आप सकल में आप। अनिक छूत रचताप उथाप, अविनाशी नाही किच कांड। धारण धारे हो ब्रह्मांड, अलकपे पुरख प्रताप। आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सो बावंत। सगल संसार उदरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदारण। प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेल लय कृपाल। गुरु का शब्द जप पही निहाल, उनकी सेवा सोई लागे। जिसनु कृपा करह बड़ पागे, नाम जपत पावे विश्राम। नानक तिन पुरखोत्तम करमा, जो किच करे सो प्रभ कह रंग। सदा सदा बसै हर संग, सह सुभाय हुए सो हुए। करने हर पछाने सोई, प्रभ का किया जल मीठ लगाना। जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माए समाए। कोई सुख निदान उन्हू बने आए, आपस को आप दीनु मान। नानक प्रभ जन एको जान, सलोक सर्व कला भरपूर। प्रभ बिरथा जानन हार, जा कै सिमरन उदरी है। नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गार्डन हार गोपाल, सर्व जी आया पे प्रतिपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरता कोई नाही। रे मन मेरे सदा हर जा, अविनाशी प्रभ आपे आप। अपन किया कछु न हुए, जे सो प्राणी लोचै कोई। तिस बिन नाही तेरे किछ काम, गत नानक जपे कर नाम। रूपवंत हुए नाही मोह है,
प्रभ की जो सगल घट सो है, धनवंता हुए क्या को गर्व है, जा सब किस तिसका दिया थर्व है। अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहता वै, जे को हुए वह दातार, तिस देन हार जानेगा वार। जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग। ज्यो मंदर को थामे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्तमन। ज्यो पाखान आव चढ़तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे। ज्यो अंधकार दीपक परगास, गुर दर्शन देख मन होए बिगास। ज्यो माओ ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिलजूत प्रगटावे। तिन संतन की बाछो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर काहे बिललाइए, पूर्व लिखे कल किया पाइए। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तुत सहचतार। जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान। कौन बसताई तीर संग, लपट रो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत छेती कर जाहे। जिस वक्र को लैन तू आया, राम नाम संतन कर वाया। ताजब मान लेहु मन भूल, राम नाम हृदय महतो। लाल के संत संचाल, अवर त्या बिख्या जंजाल। तन तन कह सब कोए, मुखु जल हर दर गै सोए। एहो वापार विरला वापार है, नानक ताके सद बलिहार है। चरण साध के तोय तोय पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की धूर करो इसनान, साध उपर जाइए कुरबान। साध सिवा वड भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनिक बिघन ते साधु राखै, हार गुण गाय अमृत रचाखै। उठ गई संत तर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक कौ जीवालन हार, भूखे को देवत आधार। सर्व निदान जाकी दृष्टि माही, पूर्व लिखे का लहना पाहे। सब किस तिसका करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग। जप जन सदा सदा दिन रैणी, सब त्यू उच निर्मले करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रवचीत। भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जाके हृदय को हुए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत। सची दृढ़ सच आया कार, सच वरत सच आपा सार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग, किछ त्रिगुण ते प्रभ भिन्न। तिस हे बुझाई नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदि अविनाशी ब्रह्मन मैरा, मानुक की तू प्रीत्या। किस्ते पर नाही किछ कोए, सर्व निरंतर एक को सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गही सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद। साथ तेरे की चरणी पाओ, नानक है मन हो अनुराओ। मन सा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरण भरण जाका नेत्र पूर, तिसका मंत्र न जाने होर। अनदरू मंगल सज्जा कै, सर्व थोक सुनी है करता कै। राज मैं राजोग मैं जोगी, तप मैं तपेश्वर ग्रिस्त मैं भोगी। त्याय त्याय भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरुख का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मित नाहि, सगल देव हारे अवगाहि। पिता के जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। समत ज्ञान ध्यान जिंदे, जना दास नाम त्यावै से। त्यो गुण मैं जाको परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए। ऊच नीच तिसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जा। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेद करै एक रंग। नाना बिद किन्नो विस्तार, प्रभव नासी एक ओंकार। नाना चलत करे खिन माही, पूरे पूर्ण सब ठाई। नाना बिद कर बनत बनाई, अपने कीमत आपे पाई। सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान।
नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संगुदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख समाहे समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सतनाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सतनाम गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर हृदय प्रवेश, सत नृत बूझै जे कोए, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत, जिसकी सिर सुकर नहार, अवर न बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योतिष भावै सो वरतिया, बिस्मन बिस्म पहे बिस्मा, जिन बूझया तिसाया स्वाद, प्रभ कै रंग राजन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, ओए दाते दू काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी, जन कै संग एक लिव लागी, गुण गोविंद।

जपो हरना, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो, भगत पाई तरिया संसार, बिन भगति तन हो सी छार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़त जात पाई

उपजी प्रीत प्रेम रसचाऊ, मंतन अंतर ही सुआऊ, नित्रोपेख दर सुख होए, मन भिक्षे साध चरण तोय, भक्त जना के मंतन रंग, बिरला को पावे संग, एक बर दीजे करमया, गुरप्रसाद नाम जप लया, गुरप्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाय, नानक रहया सर्व समाय, प्रभु संदीन दयाल, भगत वचल सदा।

आपे ही फिर जाप अष्टपदी। जब कार्य कछ न दृष्टिता, पाप पुन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समाद, तब वै विरोध के संकमाद। जब इसका वर्ण चिन्ह जापत, तब हरक सो कहो किसे व्यापत। जब अपना पापार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम। अपन खेला वर्ती जा, नान करन है हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक हरगम पार, तब नरक सुर कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सैव सुभाए, तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तरे, तब कवन निडर कवन कत डरे। अपन चलताप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपने आसन, कह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किछ होए। जब अविगत गोचर प्रवेका, तब चित्र गुप्त किछ पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गादे, तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे। अपन आपा पिय चर जा, नानक अपन रूपा पिय पर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण, तह कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कहो कीश। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तह किसै भू कवन तृपतावै। करन करावन करने हार, नानक करते का नहीं सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पह प्रवीन, तह बेत कतेब कहा कोचीन। जब अपना पापुरता है, तो सगन अपसगन कहा विचार है। जय अपन ऊचापन अपनेरा, तै कहुन ठाकुर कौन कहिए चेरा। विस्मन विस्म रहे विस्मार, नानक अपनी गत जानुआ। जय अचल अचेत अभेद समाया, उहां किसै व्यापत माया। आपस को आपै आदेश, त्यो गुण का नाही प्रवेश। जय कह एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागै चिंता। जय अपना पाप त्यारा, तह कौन कथै सुन सुन नैहारा। बहु बेअंत ऊचते ऊचा, नानक आपस को आपह पहुँचा। जय प्रचो प्रपंच कार, तय गुण में किन्नो विस्तार। पाप पुन तय पही कहावत, को नरक को सुर्ख बंचावत। आल जाल माया जंजाल, हो मैं मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार, कियो बख्यान अपन खेल आप कर देखै। खेल संकोचै तो नानक कै। जय अभिगत भगत आप, जय पसरै पासार संत प्रताप। दुहु पाकाया पह तनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आपह कौत करै अनद चोज, आपह रस भोगन निरजोग। जिस पावै तिस अपना इलावै, जिस पावै

0: मानव इंद्र गजेंद्र नराधव ज्यों त्रिलोको राज करेंगे।
1: कोट स्नान गजादक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे।
0: ब्रह्मेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे।

चरण हृदय त्याए अंतर आत्मय समाले आप छड सदा रहै परणै गुर बिन अवर न जाने कोए कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै पावै मुक्त न होरथ है कोई पुछो बबेकियां जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो विण सतगुरु मुक्त न पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावो ए सची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी त कच्ची सतगुरु बाजा होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिनका हिर लिया माया बोलन पै रवाणी कहे नानक सतगुरु बाजा होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सचे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव सकत आप उपाय कह करता पे हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक ससियों ले बलाए कहे नानक आप करता पे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप बीचार दे ततै सार न जाने ततै सार न जाने गुरु बाजो ततै सार न जाने तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैण बिहाणी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोलै अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनु अन दिन हर लिव लागै जागत रैण विहाणी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मन विसारी है मनो क्यों विसारी है ए वरदाता जे अगन मैं आहार पहुँचावै ओ सुनो केहो पोहे न सकी जे सुनाओ अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानकी वरदाता सो क्यों मनहो विसारी है जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जेही करता है खेल रचाया जात इस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी त्रिसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाउ दूजा लाया कहे नानक गुर प्रसादी जिना लेव लागी तिने विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटहो रहे लोक वेल लाए ऐसा सतगुर जी मिलै तिसनु सिर सौंपीऐ विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए हर आप अमूलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए हर रास मेरी मन वणजारा हर रास मेरी मन वणजारा सतगुरु ते रास जानी हर हर नित जपे हो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कहे नानक हर रास मेरी मन होआ वणजारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पिए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागै आए एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुरु मिलै जिसे आए कहे नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होआ चलत नदरी आया कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए
ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਪੇ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ, ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਨਦਰੇ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਆਨ ਦੱਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ। ਰਸਨਾ ਰਸ ਸੁਮਾਣੀ, ਸਾਚੋ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਗਾ ਤੋ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵਾਓ। ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ। ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵਨਿਧ, ਤਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ, ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ। ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ, ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੋ। ਗਾਵਹੁ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸੱਚੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਾ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵਾ ਹੈ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹਿ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ।

जय राम। निरपहो निरंकार सिस नाम जाका किया सकल जहान, सेवक से वह कर्म चढ़ाओ पिनी रैन, जिना मन चाओ सिखी सिख्या गुर विचार, नदरी क्रम लगाए पार, कोलू चक्का चक्की चक्की।

0: पत परवाना पिछे पाई ता नानक तोलिया जापे महला पहला।
1: वदी सुब जगनान का सच्चा विखै सोए सबनी छाला मारियां करता करे सो होए। अगे जा आत न जोर है अगे जियो न वे जिनकी लेख है पद पवै।

0: जारिदय कुसुदय जाहे महला पहला।
1: पर पुस्तक संध्या बाद अंग सिल पूजस बगल समाधंग मुख चूट विभूपण सारंग त्रैपाल त्याल विचारंग गलमाला तिलक ललाटंग दुई धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मंग कर्मंग सपू करने चो कर्मंग कौ नानक ने चो त्यावै विण सतगुर वाट न पावै।

सुख सोहलड़ा हर पियावहु गुरमुख हर फल पावहु गुरमुख फल पावहु हर नाम त्यावहु

और सब जी सच जानो। सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ, सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख

सहस्कृति महला पहला पाठ पुस्तक संध्या बादन सिर पूज सबगुर समाधन मुख झूठ विभूखण सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गल माला तिलक लिलाटंग द्वय बस्त धोती वस्त्र कपाटंग जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चय त्यावै बिन सतगुर बाट न पावै।

महान पिता को दास है, सोई निरंजन देव। एक कृष्णं ता सर्वदेवा, देव देवा ताय आत्म है, आत्मं श्रीवास देवस्य, जे कोई जान सपीव, नानक ता को दास है, सोई निरंजन देव। श्लोक सहस्कृति।

कथंचि माता कथंचि पिता कथंचि बनिता विनोद सुत है कथंच प्रातमीत हित बंधव कथंच मोह कुटुंब्यते कथंच चपल मोहनी रूपं पेखंते त्यागं करोत रहंत संग भगवान सिमरण नानक लभ्यं अच्युत तनय त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधव है त्रिग स्नेहं बनता विलास त्रिग स्नेहं बनता विलास सुत है त्रिग स्नेहं गृहात कह साध संग स्नेहे सत्यं सुख्यं बसंत नानक है मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं वर्धंत जरुआ हत्यंत माया अत्यंत आशा अतिथ्य पवनं गणंत स्वासा पयान धर्मं पतंत मोह कूप दुर्लभ्य है देहं तत् आश्रयं नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा काच कोटंग रचंत तोयं लेपनं रक्त चर्मण है नमन द्वारं पीत रहतं बाय रूपं अस्थमन है गोविंद नाम नह सिमरंत अज्ञानी जानंत आस्थिरं दुर्लभ दे उदरंत सात शरण नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत तोयं अच्युत गुणज्ञं पूर्णं बहुलो कृपाला गंभीरं उच्च सर्वज्ञ अपारा।

मृगी पेखंत बधिक प्राय प्रहारेण लख्य आवधय अहो जस्य रखेन गोपोल गोपाल है नानक रोम न छेद्यते। बहु जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर्दिशय विखम थान बसंत ऊच नह सिमरंत मरण कदांच है। हुवंत आज्ञा भगवान पुरख नानक कीटी सास्या कर खते। शब्दं रतं हितं मया कीर्तं कली कर्म कृत्वा मिटं तत्रागत परमोहं भगवान रमणं सर्वत्र स्थान्यं दृष्टयं अमोघ दर्शनं बसंत साध मिटं बसंत साध रसनां हर हर हर हरे नानक प्रियं जाप जपना। कटंत रूपं कटंत दीपं कटंत रावसस्यर नख्यंत्र गगनं कटंत बसदागिर तारक शिखंडं कटंत ललना सुत प्राथीतं कटंत कनक माया मानिक माया सब रूपं नह कटंत केवल गोपाल अच्युत। आसे रंग नानक साध जान नह बिलंब धर्मं बिलंग पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सन संतं केल विखनासं प्राप्तं धर्म लक्षण नानक जेह सो प्रसन्न माधव है। मृत मोहं अलप बुद्ध्यं रचंत बनता विनोद साहं जौबन वह क्रम कनिक कुंडल है बचित्र मंदर सोभंत बस्त्रा इत्यंत माया व्यापतं। हे अच्युत शरण संत नानक सो भगवान नमः। जन्मंत मरणं हरखं तसोगं भोगं तारोगं ऊचं तनीचं नाना सुमोचं राजं तमानं अभिमानं तहीनं परवृत्त मार्गं वर्तन्त विनाशनं गोविंद भजन साध संगेन आस्थिरं नानक भगवंत भजनासनं। कृपंत हरियं मत तत ज्ञानं बगसीद्य बसुदा कुशल थानं बस्यंतरिक्षं त्यागमानं शीतलं त्रिद्यं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हर दर्श लीणा भजंत नानक शब्द बीणा कहंत वेदा।

चिंता मात पित परात है, न चिंता कछ लोक कह, न चिंता बन सासु तप मीत है, पर व्यर्थ माया सन बंधन है। दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जी प्रतपाल कह। अनित्य वितंग अनित्य चितंग अनित्य आशा भव भेद प्रकार, अनित्य हितंग अहं बंधं ब्रह्म माया मलन मलनं विकारं। फिर अंत जोन अनेक जठरागन नह से मनंत मलीन बुद्धिं, हे गोविंद कर्त मया नानक पतत उदाहरण साध संगम है। गिरंत गिर पतित पातालं, जलंत दे द्वी दे दीप्य बैस्वांत्र है। बहंत अगाह तोयं तरंगं, दुख्यंत ग्रह चिंता जन्मं का मरण है। अनेक साधन न सिद्ध्यते नानक स्तंभं अस्तंभं अस्तंभं शब्द साध स्वजन है। कोर दुख्यं नेक हत्यं, जन्म दारिद्र महाविख्यादं, मिटंत सगल सिमरंत हर नाम, नानक जैसे पावक काष्ठ भस्मं करोत। अंधकार सिमरत प्रकाशं, गुण रमंत यज्ञ खंडन है। हृद बसंत पय पीत दूत है, कर्म करंत महानिर्मल है। जन्म मरण रहंत श्रोता, सुख समूह अमोघ दर्शन है। शरण योगं संत प्रे नानक, सो भगवान खेमं करोत। पाछं करोत अग्रणी वह, निरासं आस पूर्ण है। निर्तन भयं तनवंत है, रोगियं रोग खंडन है। भगत्यं भगत दानं, राम नाम गुण कीर्तन है। पार ब्रह्म पुरख दाता रहे, नानक गुर सेवा किं न लभ्यते। अधरं तरं तारणय, निर्धनं तन नाम नरहर। अनाथ नाथ गोविंद, बालहीन बल केशव। सरभूत दयाल, अचुत दीन बांधव दामोदर है। सर्वज्ञ पूर्ण पुरख भगवान है, भगत वचल करुणामय। काट काट बसंत वासुदेव है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। जाचंत नानक कृपाल प्रसादे, नह विसरंत नह विसरंत नारायण है। नह समर्थं नह सेवकं, नह प्रीत पुरख पुरखोत्तमं, तव प्रसाद सिमरते नामं, नानक कृपाल हर हर गुरं। पर्ण पोखण करंत जिया, विश्राम चादन देवंत दानं। सृजंत रतन जन्म चतुर चेतन है, वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है। सिमरंत नानक हर हर हरे, अनित्य रचना।

कीर्तनं सुधर्मं देह तारण है। अमृत नाम नारायण नानक पीवतं संतना तृप्यते। सहनशील संतं सामित्रस्य दुर्जन है। नानक भोजन अनेक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते। तिरस्कार नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह। गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है। नानक से प्राणी सुख बासन है। सेना साध समूह सूर जितं सन्नाहं तन निमृताह। आवद है गुण गोविंद रमणं ओट गुर शब्द कर चरमण है। आरूढ़ ते अश्व रथ नाग है। बुझनते प्रभ मार्ग है। विचरते निर्भयं शत्रु सेना पायन्ते गोपाल कीर्तन है। जितते विश्व संसार है। नानक वश्यं करोत पंच तस्कर है। मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रम छाया रच दुर मत है। तत है कुटुंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है। नच विद्या निधान निगम नच गुणज्ञ नाम कीर्तन है। नच राग रतन कठन है चंचल चतुर चातुर है। पाग उदम लब्ध्यंग माया नानक साध संग खल पंडित है। कंठ रमणीय राम राम माला हस ऊच प्रेम धारणी। जीह पाण जो उत्तम श्लोक उदृढ़ नयन नंदनी। गुरमंत्र हीन से जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रष्टन है। कुकर है सुकर है गर्दभ है काक है सर्पन है तुल खल है। चरणार बिंद भजनंग हृदयंग नाम धारण है। कीर्तनंग सा संगेण नानक नह दृष्टंत जमदूतन है। नाच दुर्लभंग तनंग रूपंग नाच दुर्लभंग स्वर्ग राजन है। नाच दुर्लभंग भोजनं व्यंजनं नाच दुर्लभंग स्वच्छ अंबर है। नाच दुर्लभंग सुत मित्र पाक प्रात बांधव नाच दुर्लभंग बनिता बेलास है। नाच दुर्लभंग विद्या परवीण नाच दुर्लभंग चतुर चंचल है। दुर्लभंग एक भगवान है। दुर्लभंग एक भगवान नाम है। नानक लब्ध्यंग साध संग कृपा प्रभंग। जात कत है तत है दृष्टं स्वर्ग मर्त कायाल लोक है। सर्वत रमणं गोविंद है। नानक लेप शेप ना लिप्यते। विख्या पयंत अमृतं दृष्टा सखा स्वजन है। दुखं पयंत सुखं पय पीतं ता निर्पय। थान विहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है। सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है। सर्वकर्ता ममं कर्ता नानक लेप शेप ना लिप्यते। न शीतलंग चंद्रदेव है न शीतलंग पावन चंदन है। न शीतलंग शीत रुतेण नानक शीतलंग साध स्वजन है। मंत्रंग राम नाम मंत्रंग राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है। ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है। दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित है। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहता है। उपदेशं सामित्र सत्र है। भगवंत भगत पावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं आपते आग सगल रेणु कहे। खट लक्षण पूर्ण पुरख है। नानक नाम साध स्वजन है। अजापोगंत कांद मूलं बसंते समीप के हर है। तत्र गते संसार है। नानक सोघर व्यापते। शलंग छिद्रंग कोट विघ्नं अपराधं किल बिकमलं परम मोहं मान अपमानं मदंग माया व्यापतं। मित्र
मित्र है जन्म जमंत मित्रं जन्म परमंत नरक अनेक पावन ना सिद्यते निर्मलं सासंग है जपंत नान गोपाल नाम रमंत गुण गोविंद नित प्रत है तरण शरण स्वामी रमन शील परमेश्वर है करण कारण समर्थ है दान देत प्रभ पूर्ण है निराशयास करणं सगल अर्थ आलय है गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचिक है दुर्गम स्थान सुखमं महादुख सर्व सुखण दुर्वचन पीर परमं साकत पिसनं सुरजन है आस्थितं सोग हरखं पय खीणं ता निर्भव है पय अटवीयं महानगर वासं धर्म लक्षण।

रामं बहुजोनी परमावण है चित चरणं त्रैलोक गम्यं जाप तप शील विदारण है अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समावण है पाव पय विमुंचत साध संगम ओट नानक नारायण है हे कल मूल क्रोध कदंच करुणा नायक ऊपर जते विख्यंत जीवं वश्यं क्रोध नित्यं क्रोध जथा मरकट है अनेक शासन ताड़ंत जम दूत तव संगे अदमंग नर है दीन दुख पंजन दयाल प्रभ नानक सर्व जी रख्या करोत हे लो बालम पट संग सिर मोरा अनेक लहरी कलोलते तावंत जी आ बहु प्रकार अनेक पांत बहु डोलते नच मित्रंग नच इष्टंग नच बाधव नच मात पिता तब लज्जिया अकर्णं करोत अखाते खाद्यं असाज्यं साज समझ्या त्राहि त्राहि शरण स्वामी विज्ञा विज्ञाप्त नानक हर नर हर है हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत शत्रं दृढ़ंत अनक अनेक माया विस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है प्रम्प्यान उद्यान रमणं महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध

संसार सा भरनय करुणामय सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है दीना नाथ मया करो। शरीर स्वस्थ खीन समय सिमरंत नानक राम दमोदर माधव है। चरण कमलं चरण कमल शरणं रमणं गोपाल कीर्तनय सासंगेन तरणं नानक महासागर पय दुतर है। सिर मस्तक रख्या पार ब्रह्मं हस्तकाया रख्या परमेश्वर है। आत्म रख्या गोपाल स्वामी तन चरण रख्या जगदीश्वर है। सर्व रख्या गुरदयाल पय दुख विनाशन है। भगत वचल अनाथ नाथे शरण पुरख शरण नानक पुरख अछुत है। जेन कला धार्यो आकाशं वैसंत्रं काष्ठ बेष्टं जेन कला ससुर नक्षत्र ज्योतिं सासं शरीर धारणं जेन कला मात गर्भ प्रतिपालं नय छेदंत जठर रोगण है। तेन कला अस्तंभं सरोवरं नानक नय छिजंत तरंग तोयण है। गुसाई ग्रेष्ट रूपेण सिमरण सर्वत्र जीवन है। लब्ध्यं संसंगेन नानक स्वच्छ मार्ग हर भक्तन है। मस्कं पगनंत सैलं करदं तरंत पपील कहे सागरं लंघंत प्रिंगं सागरं लघंत पिंगं तम प्रगास अंध कहे साध

वंदय बसंत साधृद्यंग अच्युत बुझंत नानक बड़ भागी है। उद्यान बसनंग संसारंग संबंधी स्वान स्याल खर है। विखम स्थान मन मोह मदरंग महाया साध पंच तस्कर है। हित मोह पय परम परमणंग अहंग फांस तीक्षण कठिन है। पावक तो असाध कोरंग अगम नीर नहलंगन है। पाज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उदरण कृपा। कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगलंग रोग खंडन है। साध संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वर है। श्यामलंग मधुर मानुख्यंग हृदयंग पूम वैरण है। निवंत होवंत मिथ्या चेतन संत स्वजन है। अचेत मूढ़ा ना जानंत कटंत सासा नित प्रते। छिजंत महासुंदरी काया काल कन्या ग्रासते। रचंत पुरख है कुटंब लीला नित आसा बिख्या विनोद। परमंत परमंत बहुचन महार्यो शरण नानक करुणामय है। हे जेहबे हे रसगे मधुर प्रिय तुयं सतहतं परम वादं अवरत एथय सुध अचरण है। गोविंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतं बलवंत बलात् कारण है। चरण कमल नह पजंत तृण समान त्रिग जनमन है।

तमेरं सहकं तहरियं बूडं तंतरियं ऊनं तपरियं अंधकार कोट सूर उजारं बिनवंत नानक हर गुर दयारं। ब्राह्मण है संग उदर

विघ्न करणं कूचरणं सर्व जी कहे लौ लई तृष्णायत पत मन माये कर्म कर्त से सुख रे मतेश्वर चरणं उदरणं पै दुतर है अनेक पातिक हरणं नानक साध संगम ना संसार नानक साध संगम ना संशय है महला पंजवां गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर्पूर पोहप सुगंधा परस मानुख्य देहं मलिनं मजा रुदर दुर्गंधा नानक हाथ गर्वेण अज्ञाननो परमाणु पर्यंतया का सह दीप लो शिखंडन है गछीण नयन पारीण नानक बिना साधु ना सिध्यते जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेण मिथ्या कीर्त साथ चलंथो पणंत नानक।

मैला घर संगीण निम बिरख से चंदन है निकट बसंतो बांसो नानक बुद्ध ना बोहते। गाथा गुंफ गोपाल कंठ कथंग मथंग मान मर्दन है हतंग पंच सत्रेण नानक हर बाणे पर हरण है। बचन साध सुख पंथा लहन था बड कर्मण है रहन था जन्म मरणे न रमण नानक हर कीर्तन है। पतर पुरजेण।

संसार काम तजनंग नानक गोविंद रमणंग साध संगम है सुमंत्र साध बचना कोट लोक विनाशन है हर चरण कमल ध्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जीण मध्य हर कीर्तन है मुक्ते रमण गोविंद है नानक लब ध्यंग बड़ भागण है हर लब दो मित्र

आप जसंग मिटंत सत पुत्र है, सिमरतव्य हृदय गुर मंत्रण है, प्रीतम भगवान अच्युत नानक संसार सागर तारण है, मरणं विश्रण गोविंद है, जीवनं हर नाम त्यावण है, लबणं साध संगे नानक हर पूर्व लिखण है, दसन बिहून पुयंगम मंत्र गारुड़ी निवारं व्याध उपाड़न संतं नानक लबद कर्मण है, जाथ काथ रमणं शरणं सर्वत्र जियण है, तथ लंगणं प्रेम नानं प्रसादं गुरदर्शन है, चरणारबिंद मन विद्यं सिद्ध्यं चरणारबिंद मन विद्यं सिद्ध्यं सर्व कुशलण है, गाथा गावंत नानक पव्यं परापूर्वण है, शुभ वचन रमणं गावणं शुभ वचन रमणं गवणं साध संगेन उदरण है, संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते, वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उद्धारं कुल

नानक वड़ भागी भेट अंत दर्शन है। सर्व दोख परंत्यागी सर्व धर्म दृढ़ंतन है। लबधेन साध संगेण नानक मस्त लिख नानक मस्तक लिखण है। होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सतम जानो नानक प्रीत कारण। सुखेण बैण रत्नं रचनं कुसुम्बरंगण रोग शोक वियोग नानक सुख न सुपन है। पुनः महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हाथ कला में अगाम मस्तक लेखावती उर्ज रहो सब रंग उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती। उसत कह न जाए मुखो तुहारिया मोही देख दर्श नानक बलिहारिया। संत सभा में बैस की कीर्त मैं कहा हरपी सब सिगार एहो एहो जियो सब दिवा। आस प्यासी सेज सुकंत विशाई हर हम सक हो वह भाग साजन पाई है। सखी काजल हार तंबोर सब किच साजिया सोलह किए सिगार की अंजन पाजिया। जे घर आवै कंत सब किछ पाई है हर हां कंत बाज सिगार सब बिरथा जाई है। जिस घर वस्या कंत सावड भागने तिस बनिया हब सिगार साई सोहागने। हो सुती हुए अचिंत मन आस पुराइया हर हां जा घर आया कंत ता सब किछ पाइया। आसाइती आस की आस पुराइया सतगुर पै दयाल ता पूरा पाइया। मैं तने अवगुण बहुत की अवगुण छाया हर हां सतगुर पै दयाल ता मन ठहराया। कहो नानक बे अंत त्याया गुतर हो संसार सतगुरु उतराया। मिटाया वा गौण जा पूरा पाया हर हां अमृत हर का नाम सतगुर ते पाया। मेरे हाथ पद्म आगन सुख बासना सखी मोर कंठ रतान पेख दुख नासना। बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद सिद्ध नव निद बसै जिस सदा कर। पारत रावण जाहे सही ता लाजियै नित प्रत हिरा पर दर्भ छिदर कत ढाकिया। हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पै पुनीत पार ब्रह्म बिचारई। ऊपर बने आकाश तलै धर सोहती दह दस चमकै बीजल मुख को जोहती। खोजत फिरो विदेश पियो कत पाई है हर हां जे मसक हो वह भाग तरस समाई है। डिठे सभ्य थाव नहीं तुद जिहा बदो पुरख विधाते विधाता ता तू सोहया। वस दी सगनिया पार अनूप रामदासपुर हर हां नानक कसमन कसमल जाहे नाइय रामदास सार। चात्रिक चित सुचित सुचा साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसै को आही है। बन बन फिरते उदास बूंद जल कारणे हर हां त्यों सग हर हां त्यों हर जन मांगै नाम नानक बलिहारणे। मित कचित अनूप मरम न जानिए गाहक गुनी अपार सुता तपशानिए। चित है चित समाए हो वै रंग कना हर हां चंचल चूरै मार तपावै सच तना। सुपने उबी पई गहो की ना अंचला सुंदर पुरख बिराजत पेख मन बंचला। खोजो ताक चरण कहो कत पाई हर हां सोई जतान बताए सखी प्रियो पाई है। नैन देखन साध सी नैन बिहालिया करन सुनहे नाद करन मुंद कालिया।

प्रगट भयो सब लो मह नानक अदम पतंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

के बाहर पांचों नजन समुद्र सातवा गिरी तुलनावनी अंत में सुनी कहना अंत में करने देना अंत में देखना सुनना।

निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उस

संत मूर्ख संत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कलवट हत्या कमाए संत पापी पाप असंत मूड़े यार करे फिर संत मलेच मल पाक खाए असंत निंदक करे पा नानक नीच कह जा मारे न जामा के जो तुम पावे सही करी कर सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें सिर पार होए अखी

ब्राह्मण कहते कहते रतन सुन कितिया पानी कितिया पानी कहते पाप सरेंद्र कितिया सुनती नानक अंत न अंत ज्ञान अंत में ज्ञान पर चंद्र।

निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशि।

अंत मूर्ख अंध घोर अशंख चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वाय शंख पापी पाप अशंख कूड़े आर मरे रहे अशंख मलेच मल पाए अशंख निंदक करे नानक नीच कह जा मारे न जा जो तुम पावे सही करे कर।

बच्ची बच्चा महाराज जी की हजूरी हजूरी अंदर पूरन गुरु मर्यादा अनुसार पति ते पत्नी चार लावां मर्यादा अनुसार बन गए हैं। दोवें परिवारां नूं लख लख लख लख वधाइयां। वधाइयां दा शब्द गाया जाएगा। सारी संगतां इस सुभागी जोड़ी नूं असीस देना। सचे पातशाह सदाई माता पिता जी का सत्कार सम्मान और गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नाल जुड़े रहन। जिंदगी दी सारियां तरक्कियां इन्हां बच्चियां दी झोली विच आए। लख लख वधाइयां सारयां नूं।

मिल बुझै खोज शब्द में राज करेगा खालसाया की रह न कोए ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे।

निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी।

अंक मूर्ख अंध भोर अंक चोर राम अशंख अमर कर जाए अशंख कल वाय शंख पापी पाप अशंख कूड़े आर करे फिराए अशंख मलेश मल पाए अशंख निंदक करे पास नानक नीच कहे विचार मारे न जावा के जो सुख पावे सही परिवार सदा सलाम संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत रहे सिर्फ।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी।

संस्कृत्या संस्कृतौ संस्कृत्या संस्कृतौ संस्कृतं वे संस्कृतो मन

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय शांत पापी पाप अशांत मूड़े यार करे फिर अशांत मलेश माल पाए अशांत निंदक।

निरंकार पुरुष निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक होशी।

संत क्रिया संत भाव संत क्रिया संत सत्ताव संत क्रांति के पाप संत योग मन कहूं।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाया कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे रहे अशांत मलेच माल पाए अशांत निंदक करें पा नानक नींद कहें

निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई

संत मूर्ख अंध घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत मूड़े आर करे संत मलेच मल पाए असंत।

कृता निर्भौ निर्वै अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच

अशांत पूरे और करे फिर संत मलेच मल भक्त है असंत निंदक करे नानक कह मारे न जावा के जो तुम पावे सही सही कर सदा सलाम संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें सिर्फ।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशि।

अंत मूर्ख अंत घोर संत चोर राम असंत अमर कर जाए असंत कल वाय संत पापी पाप असंत कूड़े आए फिर संत मलेर कुमार भाखाए असंत निंदक करें पा नानक

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवट हत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत कूड़े आए अशांत मलेच माल पाए अशांत निंदक करें पा नानक

निर्भौ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद। जब आदि सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य नानक उसी सत्य सुचै सोए।